हमारे सभी सुनने वालों की सेवा में मेरे तरफ से हर एक को सादर नमस्कार और आदाब सलाम। ये है ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन रेडियो SBS का प्रोग्राम जो आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। आज बुधवार का दिन है, आप सभी सुनने वालों को एक शुभ सुबह शुभ दिन बस पेश किया जा रहा है रेडियो SBS का पूरा और पूरा टीम के तरफ से। जो बीमार या लाचार है भगवान से तंदुरुस्त के लिए प्रार्थना या तो अल्लाह से दुआ किया जा रहा है उन सभी के दुख और हमें हमेशा के लिए दूर करने के लिए। जिलों के घर पर खुशियां ही खुशियां है, सारी सालगिरह विवाह संस्कार जन्मदिन या तो प्यारा प्यारा बच्चा पैदा हुआ है, तहे दिल से बधाई और मुबारकबाद पेश किया जा रहा है रेडियो SBS का पूरा और पूरा टीम के तरफ से। हर एक इन्फॉर्मेशन के लिए इन्फो के लिए रेडियो SBS का टेलीफोन नंबर है 0325656560 और स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है 0322666611। मैं हूं आपका खिदमतगुजार रबीन। यहां से प्रोग्राम भजन यात्रा आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। भजन यात्रा प्रोग्राम का पहला भजन हमेशा होता है हरी हरन की आवाज में सुबह सुबह लो शिव का नाम पेश किया जा रहा है हमारी सभी सुनने वालों के लिए और सभी भक्त प्राणियों के लिए।

जरिए पेश की गई सुबह सुबह लो शिव का नाम हरि हरन की आवाज में ये सुंदर सा भजन आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में पेश की गई रेडियो SBS की जरिए। प्रोग्राम भजन यात्रा आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है रेडियो SBS की जरिए। जरूर और जरूर सुनते ही रहना, आज बुधवार का दिन है। आप सभी सुनने वालों को बस एक खूबसूरत और सुहाना दिन बस पेश किया जा रहा है रेडियो SBS की जरिए। प्रोग्राम भजन यात्रा जरूर और जरूर सुनते ही रहना। चलिए अगला भजन जो प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है विभिन्न सच देवा की आवाज में, ये सुंदर भजन आप सुनते ही रहना।

और सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश की गई है। चलिए अगला भजन जो प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है, मधुस्मिता की आवाज में ये सुंदर भजन प्रोग्राम में सुनते ही रहना। रेडियो SBS के जरिए जो पेश किया जा रहा है।

सुंदर साहब जनाब सभी सुनने वालों की सेवा में पेश की गई रेडियो SBS के जरिए अभी आपने सुना। चलिए आज के प्रोग्राम में सुंदर सा माता जी का भजन भी आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है रेडियो SBS के जरिए। जरूर और जरूर सुनते ही रहना। हम आपको ले चलते हैं ये खास सुंदर भजन की ओर जो आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है, और वो भी खासतौर पर कुमार सानू और अलका जी की आवाज में।

सुनने वालों की सेवा में सुंदर सा माता जी का भजन कुमार सानू और अलका जी के आवास में बस पेश की गए। चलिए एक और सुंदर सा भजन मिलकर सुनते हैं आज की सुबह की प्रोग्राम में।

और सभी सुनने वालों की सेवा में भजन यात्रा प्रोग्राम सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। और सुनने वालों आपको खबर किया जा रहा है रेडियो SBS का वेबसाइट radioSBS.nl उसी वेबसाइट के जरिए अपना मोबाइल टेलीफोन टैबलेट आईपैड के जरिए हमारा ये प्रोग्राम को भी आप सुन सकते हैं। चले प्रोग्राम में अब की बार खास सुंदर भजन जो आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है रेडियो SBS के जरिए जरूर और जरूर सुनते ही रहना। एक सुंदर शिव जी का भजन बस प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में जरूर और जरूर सुनते ही रहना। हम आपको ले चलेंगे अब की बार प्रोग्राम में ये खास सुंदर और सुंदर भजन की ओर जो आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जा रहा है रेडियो SBS के जरिए।

की आवाज में आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश की गई रेडियो SBS के जरिए। अगला भजन जो प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है आप सभी सुनने वालों की सेवा में, ये सुंदर सा भजन होगा।

सुनने वालों की सेवा में पेश की गई रेडियो SBS के जरिए अभी आपने सुना। सुनने वालों, अगला भजन जो प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है सेन रामबरन की आवाज में, जरूर और जरूर सुनते ही रहना, जो आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है रेडियो SBS के जरिए।

जा रहा है, एक सुंदर सा माता जी का भजन पेश किया जा रहा है। और इस भजन के बाद आप सभी सुनने वालों की सेवा में आरती भजन पेश किया जाएगी।

सुनने वालों, चले प्रोग्राम में आरती भजन की ओर हम आपको ले चलते हैं। और आज की प्रोग्राम में एक सुंदर सा गणेश जी का आरती भजन बस पेश किया जाएगा। और आरती भजन पेश किया जा रहा है रेडियो SBS का पूरा और पूरा टीम के तरफ से, हमारी तरफ से, हमारा पूरा परिवार की तरफ से, आप सभी सुनने वालों के लिए, सभी भक्त प्राणियों के लिए, उन सभी के लिए जो बीमार या लाचार है, सभी दुखित प्राणियों के लिए, सभी बच्चों के लिए, सभी जो आज नौकरी करने वाले हैं, काम करने वाले हैं, सभी को शुभ दिन पेश किया जा रहा है। और हमारे सभी सुनने वालों जो दुनिया की कोने कोने में रेडियो SBS का प्रोग्राम को सुनते हैं, उनके लिए और उनके पूरा परिवार के लिए, हर एक के लिए शुभ सुबह, शुभ दिन के साथ ये सुंदर आरती भजन बस प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है।

में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में रेडियो SBS का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है। चले अब की बार उदित नारायण और साधना सरगम की आवाज

फिल्म बाजी का गीत पेश की गई उदित नारायण और साधना सरगम की आवाज में। ये गाना भी आपने सुना जो आज की प्रोग्राम में पेश की गई है। सुन वालो रेडियो SBS का वेबसाइट रेडियो SBS.nl और उसके साथ आपको खबर किया जा रहा है। तमाम इन्फॉर्मेशन के लिए इन्फो के लिए टेलीफोन नंबर है 0362 65 65 60। जुबिन और नीति मोहन प्रोग्राम में।

0: 6611 चले आपके बार।
1: हेलो हेलो,
0: ये गाना की ओर आपको हम ले चलते हैं। भूमि फिल्म का नाम है।
1: तारीफों के पुल बांध रहे हैं होने वाले मियां के, तारीफों के पुल बांध रहे हैं। बारात कम लगता है खुले सांड खड़े हैं, ऐसे भी क्या हीरे जड़े हैं, दर्शन छोटे बस नाम बड़े हैं।

मीता गांधी की आवाज में ये गाना पेश की गई है द फिल्म भूमि। एनयूएसबीएस का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है संगीत भरी स्टेशन लाइव शहरी तरफ से। ये प्रोग्राम आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। चलिए प्रोग्राम में अभी बार फिल्म बागी, उसी फिल्म का ये गाना पेश किया जा रहा है।

फिल्म बार बार देखूं। अरबान मलिक और नीति मोहन प्रोग्राम में। सौ आसमान गाना कबूल है आज की इस प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है।

और सभी सुनने वालों की सेवा में। चलिए प्रोग्राम में जुबिन एंड पलक के आवाज में आपकी बार ये गाना पेश किया जा रहा है, इश्क फॉरएवर फिल्म का नाम।

पलक की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में आशा और उम्मीद है कि गाना आप सभी ने सुना और बेहद पसंद किया रेडियो SBS के जरिए जो पेश की गई। चलिए प्रोग्राम में अब की बार ये गाना की ओर हम आपको ले चलते हैं आतिफ असलम की आवाज में जो अब की बार पेश किया जा रहा है सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में।

मन्ना डे और लता जी की आवाज में ये गाना प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। रेडियो SBS का प्रोग्राम आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। आज का प्रोग्राम जरूर और जरूर सुनते ही रहना कुछ बुरानी नखमे आप सभी सुनने वालों की सेवा में जो पेश किया जा रहा है। किशोर एंड लता, अब आपको ले चलते हैं फिल्म का नाम दो चोर। किशोर और लता जी की आवाज में ये गाना आप सुनते ही रहना।

जनाब उस प्रोग्राम में पेश की गई सभी सुनने वालों की सेवा में चले अमित कुमार और लता जी की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है आप सभी सुनने वालों की सेवा में। सुनने वालों रेडियो SBS का प्रोग्राम शहर उत्तराखंड से बस पेश किया जा रहा है। वेबसाइट होता है radio.sbs.nl। कैसा तेरा प्यार, कैसा तेरा गुस्सा, अमित कुमार।

लता जी की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। लाइव के जरिए ये प्रोग्राम पेश किया जा रहा है रेडियो SBS का और आज का ये प्रोग्राम जरूर है और जरूर सुनते ही रहना। चले प्रोग्राम में तलत महमूद और लता जी की आवाज में ये गीत पेश किया जा रहा है।

लता मंगेशकर और तलत महमूद जी की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई सभी सुनने वालों की सेवा में। एक गाना की ओर हम आपको ले चलेंगे लता जी की आवाज में जो पेश किया जा रहा है आज के प्रोग्राम में, जरूर और जरूर सुनते ही रहना ये गाना जो आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में जो पेश किया जा रहा है।

लता जी की आवाज में खास गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में रेडियो SBS का प्रोग्राम आप सुन रहे हैं। चले प्रोग्राम में अबकी बार एक गाना की ओर हम आपको ले चलते हैं, जो आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है मोहम्मद रफी की आवाज में। बॉलीवुड फिल्मी दुनिया का सुपर एंड सुपरस्टार धर्मेंद्र का एक्टिंग किया हुआ

0: चल।
1: मोहम्मद रफी की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में किशोर कुमार प्रोग्राम में।

रेडियो SBS के जरिए गाना बस किशोर कुमार की आवाज में आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश की गई। चले प्रोग्राम में मोहम्मद रफी की आवाज में अब की बार ये गाना पेश किया जा रहा है।

पद्मश्री मोहम्मद रफी की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई। आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में रेडियो SBS का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है। पुरानी फिल्में संगीतों का प्रोग्राम आप सुन रहे हैं। लता मंगेशकर एंड माइटी मुकेश प्रोग्राम में हम आपको ले चलते हैं फिल्म का नाम मिस गुड नाइट।

रेडियो SBS के जरिए गाना जो प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में गीता दत्त और मोहम्मद रफी की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई सभी सुनने वालों की सेवा में। एक गाना किशोर कुमार की आवाज में बस पेश किया जा रहा है।

किशोर कुमार के आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चले प्रोग्राम में सुरेश वत्कर एंड लता जी की आवाज में गाना पेश

आज के प्रोग्राम में जो पेश की गई सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में आज का प्रोग्राम जरूर आप सुनते ही रहना। रेडियो SBS का जो पेश किया जा रहा है, एक बार फिर से मरहूम मोहम्मद रफी की आवाज में ये गाना आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जा रहा है। एक गाना जो झनकार म्यूजिक में

उसी फिल्म का गीत अभी आपने सुना जो आज की प्रोग्राम में पेश की गई है। चलिए फिल्म मॉडर्न इंडिया की ओर हम आपको ले चलते हैं। अगली बार शमशाद बेगम की आवाज में एक गाना पेश किया जा रहा है।

आनंद आश्रम उसी फिल्म का गाना पेश की गए यशुदास और प्रीति सागर की आवाज में। ये खूबसूरत प्यार भरी गाना भी आपने सुना जो आज के प्रोग्राम में पेश की गई रेडियो SBS की जरिए। चले प्रोग्राम में आशा और मुकेश जी की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है, नतीजा हमारी मोहब्बत का।

मुकेश और आशा जी की आवाज में ये गाना पेश की गई। फिल्म का नाम था रास्ते का पत्थर। उसी फिल्म का गीत बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में। चलिए मुकेश और लता की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है।

और लता मंगेशकर की आवाज में खूबसूरत सा गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई फिल्म का नाम था राखी। उसी फिल्म का गीत अभी आपने सुना आज के प्रोग्राम में जो पेश की गई सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। सुन वालो हर एक इन्फॉर्मेशन के लिए इन्फो के लिए टेलीफोन नंबर है 030-265-65-60। इसी टारगेट नंबर पर टेलीफोन नंबर पर सभी और सभी इन्फॉर्मेशन इन्फो आप ले सकते हैं। लता मंगेशकर की

लता मंगेशकर की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में। सुनने वालों एक गाना और लता जी की आवाज में पेश किया जा रहा है, हम आपको ले चलते हैं, फिल्म का नाम है

गाना प्रोग्राम में लता जी की आवाज में आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में पेश की गई रेडियो SBS के जरिए अभी आपने सुना। चलिए अब की बार किशोर कुमार की ओर हम आपको ले चलते हैं। गाना जो अब की बार प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में जरूर और जरूर सुनते ही रहना। किशोर कुमार प्रोग्राम में हम आपको ले चलते हैं। फिल्म का नाम आन मिलो सजना।

में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई फिल्म का नाम था आन मिलो सजना। सुनने वालों स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है 03-22-66-66-11। इसी तार की नंबर पर टेलीफोन नंबर पर स्टूडियो की ओर हमेशा आप तार कर सकते हैं। मोहम्मद रफी और आशा जी की आवाज में फिल्म कुर्बानी, उसी फिल्म का गीत पेश किया जा रहा है। 1980 का फिल्म है, 1980 का फिल्म।

की आवाज में ये गाना प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में। चलिए अब की बार फिल्म राम बलराम, उसी फिल्म का एक गाना बस पेश किया जा रहा है लता मंगेशकर एंड मोहम्मद रफी की आवाज में।

कोटवल की आवाज में ये गाना उस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। सुनने वालों हर एक इन्फॉर्मेशन के लिए इन्फो के लिए रेडियो SBS का टेलीफोन नंबर 03-265-65-60 है। इसी तार की नंबर पर टेलीफोन नंबर पर हमेशा आप तार कर सकते हैं और सभी कामों काज के लिए हर एक इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हैं। कुमार सानू और

गाना उस प्रोग्राम में पीस की गए अजरों बीठे किए गाना आप सभी ने सुना उड़े बेहद पसंद किया रेडियो SBS के जरिए पीस की गए कैलाश घेर की आवाज में ये खूबसूरत गाना। तो चलिए अब की बार फिल्म लावारिस की ओर, एक फिल्म जो 1998 में रली

गोई टू सी फिल्म का गीत अभी आपने सुना। प्रोग्राम में जो पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में। चलिए प्रोग्राम में एक बार फिर से उदित नारायण।

अभी गीत और कविता कृष्णमूर्ति के आवास में गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई। चले एक बड़ी ही खूबसूरत गाना की ओर, कुमार सानू और कविता कृष्णमूर्ति के आवास में। फिल्म का नाम

ये गाना बस आज की ये प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में। सुनने वालों स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है 03-22-66-66-11। इसी तार की नंबर पर टेलीफोन नंबर पर हमेशा स्टूडियो की ओर आप तार कर सकते हैं। ऐलान फिल्म का नाम होगा आपके बार के और सुनिधि चौहान की आवाज में ये खूबसूरत गाना पेश किया जा रहा है।

रेडियो SBS के जरिए ये नाना प्रोग्राम में पेश की गई शिल्पा राव की आवाज में अभी आपने सुना सरोग मीठे सुनकर राव ने बेहद पसंद किया है। चलिए गाना शान की आवाज में आज के प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है।

रेडियो SBS की सर ये गाना शान की आवाज में आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में राहत फतेह अली खान और श्रेया जी के आवाज में फिल्म बॉडीगार्ड का गीत

श्रेया घोषाल की आवाज में ये गाना प्रोग्राम में पेश हुआ है। चलिए फिल्म डॉन दो की ओर एक गाना जो आज के प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है,

रेडियो SBS के जरिए ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई सभी सुनने वालों की सेवा में। फिल्म का नाम था डोन डू, उसी फिल्म का गीत अभी आपने सुना आज की प्रोग्राम में जो पेश की गई।

की आवाज में ये गाना पेश की गई है, हमें तुमसे प्यार की तना, श्रेया जी की आवाज में ये गाना उस प्रोग्राम में पेश की गई है। चलिए कुमार सानू जी की ओर, कुमार सानू की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है।

कैनबिस प्रोग्राम भी पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। रेडियो SBS का प्रोग्राम आप सुन रहे हैं और आज का ये प्रोग्राम जरूर है और जरूर सुनते ही रहना। चले प्रोग्राम में सोनू निगम और अलका की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है आप सभी सुनने वालों की सेवा में।

की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में आसरो मीट है कि गाना आप सभी ने सुना और बेहद पसंद किया है। चले अलका एन शान की आवाज में एड फिल्म खुशी ये गाना पेश किया जा रहा है तेरे बिना

की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चलिए अब की बार हम आपको ले चलते हैं ये गाना की ओर जो आपकी सेवा में पेश किया जा रहा है।

आशा जी की आवाज में ये काफी प्यार भरी गाना आज की प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। आशा उम्मीद है कि गाना आप सभी ने सुना और काफी पसंद किया है। रेडियो SBS के जरिए आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में जो पेश की गई है लाइव के जरिए प्रोग्राम आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है किशोर और आशा जी के बाद मोहम्मद रफी प्रोग्राम में।

हमारा फेवरेट एक्टर धर्मेंद्र का एक्टिंग किया हुआ फिल्म कब क्यों और कहां, उसी फिल्म का गाना बस प्रोग्राम में पेश की गए मरहूम मोहम्मद रफी की आवाज में। चलिए धर्मेंद्र का एक और मूवी की ओर, फिल्म की ओर, तुम हंसी मैं जवान। मरहूम मोहम्मद रफी एक बार फिर से प्रोग्राम में।

मोहम्मद रफी की आवाज में ये गाना आज के प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। रेडियो SBS का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है। चले प्रोग्राम में तलत महमूद और लता जी की ओर। और अब की बार हम आपको ले चलते हैं फिल्म का नाम रूप की रानी चोरों का राजा। द मैन विद द गोल्डन वॉइस तलत महमूद एंड द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया लता मंगेशकर। तो रूप की रानी मैं चोरों का

दलत महमूद और लता मंगेशकर की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में। मोहम्मद रफी एंड लता मंगेशकर, हम आपको ले चलते हैं अपनी बार फिल्म दुलारी की ओर। मोहम्मद रफी और लता जी की आवाज में ये गाना बस पेश किया जा रहा है कि मिल मिल के गाएंगे। काफी पुरानी फिल्म है, फिल्म दुलारी। उन्नीस सौ 1949 का फिल्म, 1949।

लता जी की आवाज में फिल्म दुलारी का गीत पेश की गई। सुनने वालों चले प्रोग्राम में हम आपको ले चलते हैं यशुदास की ओर। हमारी बहुत सी सुनने वालों होते हैं जो यशुदास की गाने बहुत पसंद करते हैं।

यसुदास के आवास में पेश की गई चार दिन की जिंदगी है। फिल्म का नाम एक बार कहो 1980 का फिल्म, 1980 का फिल्म का गीत यसुदास की आवाज में बस पेश की गई है। रेडियो SBS का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है, हर एक को खबर कीजिए रेडियो SBS के बारे में। किशोर कुमार

लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म दुल्हा दुल्हन, उसी फिल्म का गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। लता के बाद हम आपको ले चलेंगे मरहूम मोहम्मद रफी की ओर। एक नारी दो रूप फिल्म का नाम होगा। मरहूम मोहम्मद रफी की आवाज में अब की बार

गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में एक गाना आज के प्रोग्राम में द हार्ट ऑफ द मिलियंस द माइटी मुकेश की आवाज में पेश किया जा रहा है। संसार है एक नदिया, हम आपको ले चलते हैं द हार्ट ऑफ द मिलियंस द माइटी मुकेश की ओर।

ट्रॉफ्ट बिलियंस द माइटी मुकीस की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। मुकेश के बाद हम आपको आज की प्रोग्राम में फिर से ले चलते हैं लता मंगेशकर की ओर। एक काफी पुरानी फिल्म का गीत अब की बार आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। लता मंगेशकर की आवाज में जरूर आप सुनते ही रहना।

और रेडियो SBS के जरिए लता मंगेशकर की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम भी पेश की गए आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चले प्रोग्राम में एक और गाना लता जी की आवाज में पेश किया जा रहा है, साथ में होगा महेंद्र कपूर।

की आवाज में अभी आपने सुना ये खास गाना। चले प्रोग्राम में हम आपको ले चलते हैं मोहम्मद रफी और आशा जी की ओर। श्री रामचंद्र का संगीत पर एक गाना पेश किया जा रहा है, आपका चेहरा माशाल्लाह। गाना का बोल है आपका चेहरा माशाल्लाह, मोहम्मद रफी एंड आशा।

0: मैं चलता हूँ, मुझे जाने दो, मैं चलता
1: हूँ। सुनो हमारा आज का प्रोग्राम बस यहीं से खत्म समाप्त होने पर आ गए हैं। आज के प्रोग्राम जो है सुनने के लिए लाख लाख शुक्रिया, धन्यवाद। आसरा उम्मीद है प्रोग्राम सुनकर और काफी पसंद किया है। मैं आपका खिदमत गुजार रबीन। हर एक इन्फॉर्मेशन के लिए, इन्फो के लिए टेलीफोन नंबर है 0352656560। बस आप सभी सुनने वालों से हम फिर मिलेंगे।

0: अरे आनंद बाबू,
1: आइए आइए आनंद बाबू, आप और इस मंदिर में मुझे पहचाना नहीं?
2: कहिए ना, आप रुक क्यों गए?
3: गाओ ना बेटी, गाओ
2: गाओ।

फिल्म अमर प्रेम से आपने सुना आर डी बर्मन और लता मंगेशकर की आवाज़ में रहना बीत जाए शाम न आए। और अगला गाना प्रोग्राम गीतों के लहर में है पलक मुच्छल की आवाज़ में। रजदान है गाने के बोल और फिल्म का नाम है बदनाम।

मैं फिर भी तुमको चाहूंगी। आपने सुना हाफ गर्लफ्रेंड से, ये एक फिल्म है अर्जुन कपूर और श्रद्धा कपूर का। तो अब हम चलते हैं अगले गाने की ओर। रेडियो SBS FM के जरिए से आप सुनिए लता मंगेशकर की आवाज़ में फिल्म वो कौन थी से, लग जा गले कि फिर से ये रात हो ना हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो ना हो।

तलत अजीज की आवाज में आपने सुना डैडी से सपनों के घर के। और अगला गाना प्रोग्राम गीतों के लहर में है, जुबेर नौटियाल की आवाज में, फिल्म सनक से आप सुनिए, सुना है तेरे दिल पे मेरे, लिखा है कहीं नाम है मेरा।

0: पता है शेखर, इंसान को तकलीफ कब होती है? जब वो कोई सपना देखता है और वो पूरा नहीं होता। इसलिए मैंने सोच लिया है कि आज के बाद कोई सपना ही नहीं देखूंगी।
1: बस हार गई। अपनी आंखें बंद करो संजना। बंद आंखों से इंसान सिर्फ सपना ही नहीं, कभी कभी उस हकीकत को भी देख लेता है जिसे खुली आंखें कभी नहीं देख पाती। आंखें बंद करो संजना।

ये नयन धरे धरे आपने सुना हेमंत दा की आवाज में फिल्म कोहरा से। और अब आप सुनिए प्रोग्राम गीतों के लहर में अगला गाना फिल्म खामोशी से। वो शाम कुछ अजीब थी।

आपने सुना फिल्म पागलपंती से, और अब आप सुनिए अलका याचिक और उदित नारायण की आवाज में फिल्म तेरे नाम से। तुमसे मिलना, बातें करना बड़ा अच्छा लगता है।

मोहब्बत पलकों पे कितने हसीन ख्वाब सजाती है, फूलों से महकते ख्वाब, सितारों से जगमगाते ख्वाब, शबनम से बरसते ख्वाब। फिर कभी यूं भी होता है कि पलकों की डालियों से ख्वाबों के सारे परिंदे उड़ जाते हैं और आँखें हैरान सी रह जाती हैं।

सारे सपने कहीं खो गए, हाय हम क्या से क्या हो गए। अलका याचने की आवाज में आपने सुना ये बेहतरीन गाना। अगला गाना प्रोग्राम गीतों के लहर में है, अली असमत की आवाज में फिल्म जिस्म 2 से, मौला मौला।

तुमसे मिलके ऐसा लगा तुमसे मिलके अरमा हुए पूरे दिल के। इस आयुध फिल्म पर रिंदा खजांदोर आशा भोसले एंड सुरेश वाडकर खजांदोर हेमंत कुमार कॉम दान आयुध फिल्म खामोशी फिया रेडियो SBS तुम पुकार लो।

दिल का रिश्ता तो किस्मत से बनते हैं, दिल का रिश्ता तो किस्मत से बनते हैं, वरना मुलाकात तो हजारों से होती है। राम राम, नमस्कार और सलाम वालेकुम सुनने वालों, आप सुन रहे रेडियो SBS और मैं हूं आपका सेविका नीता। हमारा साथ होगा 6 से 9 बजे तक। आप जरूर प्रोग्राम सुनते रहना। इस वक्त 6:04 गुजर गए हैं। यह है स्टूडियो टाइट।

एक्शन देना हो तो आप जरूर तार कीजिए। स्टूडियो का नंबर है 032-66-66-11। इसी नंबर पे एक व्हाट्सएप नंबर है, आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं स्टूडियो में।

सुनने वालों, हम यहाँ से आपको ले चलते हैं पहला नगमा की ओर। फिल्म का नाम है डॉन और आपको सुनाएगी किशोरदा और साथियों।

किशोरा और साथियों के वास में फिल्म का नाम है डॉन। इस बार आप सुनिए मुकद्दर का सिकंदर और आपको सुनाएगी रॉक एंड रोल क्वीन आशा भोसले।

0: गीतों की आवाज में ये और फिल्म का नाम है शालीमार बेबी लेट्स डांस टुगेदर। यहाँ से हम आपको ले चलते हैं स्वर्ग नरक के तरफ।
1: नहीं नहीं
2: क्या?
0: हाँ नहीं नहीं कोई तुम सा नहीं हसीन।
2: अरे बाबा

रॉक एंड रोल क्वीन आशा भोसले और साडे आए किशोरदा। फिल्म का नाम है स्वर्ग नरक। फिल्म तूते खिलौने की ये गीत निकाला है कि ये सुदास के आवाज में आप सुनिए।

कैपिटल ऑफ इंडिया लता मंगेशकर के आवास में। फिल्म का नाम है तुम्हारी कसम। इस बार सुनने वालों आप सुनिए फिल्म एहसास। एहसास से निकला है और आपको सुनाएगी रॉक एंड रोल क्वीन आशा भोसले।

कुछ पाने को कुछ खोने का दिल करता है और कुछ पाने का दिल करता है। रॉक एंड रोल क्वीन आशा भोसले फिल्म एहसास से निकला है। सुनने वालों, बढ़ते हैं फिल्म बातों बातों में। हाँ, बातों बातों में क्या हो जाता है?

रॉक एंड रोल क्वीन आशा भोसले और संध्याए अमित कुमार। फिल्म बातों बातों में, फिल्म दो शिकारी, विश्वजीत की आवाज में

भी गप ने मारा, फिल्म आसपास द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया लता मंगेशकर की आवाज में।

यशोदा के वासवी विलम स्वयंबर से निकाला है ये गीत। इस बार सुनिए लापरवाह, लापरवाह, और आपको सुनाएगी जतिन पंडित।

जॉन जानी जनार्दन परारम पम पम पम द मैन विद द डायमंड वॉइस मोहम्मद रफी फेमस मूवी नसीब फिल्म ना खुदा द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया लता मंगेशकर और सा दे रहा है नितिन मुकेश

0: प्यारे जैसा ना खुदा द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया लता मंगेशकर और साथ दिया नितिन मुकेश।
1: जानी तुम हसी हो, जानी तुम जवा हो।
0: रॉक एंड रोल क्वीन आशा भोसले।
1: हो,
0: जानी तुम हसीन हो।

Sanjay Jodha exclusive volume 35 से निकाला है. इस बार आप सुनिए नदीम खान के आवाज में. एल्बम का बोले अमेजिंग साउंड.

इंद्रनील रॉय के वास में। हाँ तुम ही हो। इस बार आप सुनिए एल्बम का बोले 14 सुपर शोज और आपको सुनाएगी उमर वगीत हुसैन।

शनील और मारियो के वास में ही जो मांगी खुदा से वो तो मन्नत है। इस बार आप सुनिए लकी सिंह के वास में।

0: राकेश सिंह के आवाज में। एल्बम का बोले लकी विद लव।
1: मुझे
0: तुम मिल गए,
1: सहारा
0: हो तो ऐसा हो।
1: मुझे तुम
0: संजय जोधा के आवाज में। और हाँ सुनो वालों, ये आखिरी नगमा है
1: तो ऐसा हो,
0: क्योंकि 9 बजने में 6 मिनट बाकी है। आशा और उम्मीद करती हूँ कि प्रोग्राम आपको जरूर पसंद आया होगा।